0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालो के और दोखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा सा सुखार पर सवाबई के हम
1: राशि जी बिल्कुल पर सवाबई के हम जमुंग हैदर मुमन अस्पताल सवाबी ओपर 400 के हम जमुंगा दगाम हैदर मोहम्मद मेडिकल सेंटर 400 उप पेशावर के ऑलरेडी समूंगा दगा हैदर मोहम्मद अस्पताल पे खबर खारा सी डीरी खबरी बकूप दो प्रोग्राम की
0: समा सहर
1: खगु बाकी दा दा प्रोग्राम शुरुआत को

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है। बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

0: लाइव कॉल मिला होता पर समाज स्टूडियो लाइव कॉल नंबर 03 यू पिंज 02 मुसलसल सेलिब्रेशन खत्म लाइव कॉल मिला होता पर स्टूडियो लाइव कॉल नंबर आन की 03 यू पिंज 0 आई शोर कल सुमुई सी तहजीब यस एग्जैक्टली चाहता हुआ खैर देखा डॉक्टर भाई लगी बोस के डॉक्टर भाई और सिस्टर लाइबा सुल्तान उबमरा सर निश्चा सर में बोतल रवा खुद बोतल ना बगैर गर्ज मदीखी ना जी बोतल में जान सर रवा सोना पोई मुझे कम से गिराना पाते छो मतलब जाने पर कमरा गिराना पाते छो उजरा गिराना पाते छो कम से गिराना पाते छो मंडे मंडे मंडे मुखुम घोड़ा जून पर मंडा बने देखा ना नो तो जून तक मंडो राजस्व तो जून दे मंडो दीजल सूरी ची कमजोरी मतलब मेरा बस लास की मोबाइल बस रामंड मोबाइल चलते बात शिव रामंडी मोबाइल उबर बात शिव तो बार लागल सफाई और दरा रवान वक्त मजबूतिया दबारा डे रही हो बेहतरीन और आला तरीन शैम्पू जमुंग रेगुलर शैम्पू रा रवान दे चोर तो बेलाडोना एंटी हेयर फॉल शैम्पू लेगी बेलाडोना की जमुंग डेर बेहतरीन और डेर आला तरीन स्क्रब जमुंग रा रवान था स्क्रब चरते इस्तेमाल करी गर्म इस्तेमाल करी ये जिनों को मोहतरमी से मिनी मोहतरमी शिकली आयश और कल सुम देने लावा तमन्ना उन सिमनन गैब शुवी दी अनुब सवादी वाला गैब शुवी दी नदामी वेली ची आया आसमा ताज तासु तरुसो पर चरता स्क्रब मुचरता इस्तेमाल करी दी कनमुद इस्तेमाल करी स्क्रब जमुंग द खैर सर रारवान दी जी सवेरा दो उमराबाद नोई चु वले नन इस्लामाबाद तन जिस इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में बीखी प्रे खुद बस ते खा बस
1: चाहता वाई मग अप लगो मना इस्लामाबाद को घुरा पमुंग बाने द
0: प्रोग्राम को सवेरी वेली चेर कम सीज जोड़े लॉन्च करो इट मीन चीज दो नंबर बेकार और डेर बेकार जोड़ कर दी जगह जो कम सीज जोड़ो मनो आगे बने तुम्हारे टीम लगी इट मीन ची लगा डेर अलावा जोड़ो लो हाड़ेगा ना उस जमुन का रवान बेलडोना चे जमुन का ब्लीच रा रवान दी आग ब्लीच चुके थे सिक कमाल ले चे मतलब अगर दे आम ब्लीच उन्हें बदल ली दे बारे में इंशाल्लाह मंग आगे टाइम की खबर को कल चे द खैर जमुन का ब्लीच लग रहा न्यूज़ दिश आगे बारे में खबर तेरे को खो दुम रा तबेले शम चे दग ब्लीच बदे से ब्लीच हुई चे ता सुबह लक ब्लीच चे द कम मकसद द बारे इस्तेमाल हुई नो आग मकसद खो बासिम दर के खुद नूर मकसद दोनों दोबारा बल गई सोच के आग मकसद ने भी आग बरते आग फायदे बरते रसई खेरा ब्याह तासो इंतजार दी खबर कोई थी बैलडो न किधर लमंग खैर सर सर जी सो इंतजार द बेलडोना द आला तरीन और देर बेहतरीन प्रोडक्ट इंतखाब इंतजार करो जी दिस इज तासो हैदर अनुबा सवाबी वाला सुकून बाई परुंतलियम सन ब्लॉक न मिलावे दलो दलता मैंने की समा फिर शॉप की ओगर जी दम खमिला उन्होंने सुनो एग्जैक्टली बिल्कुल जिक्र कौन द बेलडोना सन ब्लॉक नो सीजन द बेलडोना सन ब्लॉक दे और अली भाई लखवान जिदनो डेर जाते खबर मरा तक गिड़ी दीची ये उसी तो पखपल बान ने शकोल नमा तवाई वाले जमुंग से द बेलडोना सन ब्लॉक चुकम ट्यूब द नाम से खत्म शु अगर ट्यूब द खैर से तैयार दे उसमा पखल डेर ना इंशाल्लाह पर रवान हफ्ते की बजमंग बेलडोना सन ब्लॉक चुकम शॉर्टेज रागले दन दावा हम बराबर शी मौजूदा वक्त की मुंग सर बेलडोना जमुंग कम बेलडोना गोल्ड फेस वाज द आगे इंतहाई शॉर्टेज रा सर रवान दी औ दुमरम द तवे मच यो डेर यूनिक हुंदे के कार शवे दे यो डेर आला कार शवे दे दा और जी मा द्वल का बेलडोना गोल्ड फेस वाज तैयार करो यूट्यूब जी तासुप अल्लाह ताला यकीनु के जी बेलडोना प्रोडक्ट डेर खुदा में हो रही बेलडोना गोल्ड फेस वाश कम के जमंग दाने में फार्मूला चोले दमक कम नरी नरी व्यक्ति दी अगर और सर खत्मी की या कमी जिन के चिदा फेस वाश इस्तेमाल ही पर आरमान वकी दागी पर मुखुन बाने फालतू व्यक्त नाराजी ویختی ور سره ډیر زیات دنو مطلب د مخ کم ویختی دغه ور سره په مزه مزه باندې ریموف کیږي بل دا چې مخ باندې ویخته لکه مخ ویختو ته بالکل پریدی نه نو دغه فیس واش کوم چې بلډونا ویتامین سی فیس واش ورته ویلې کی دغه فیس واش ما دوله ک دانی جوړ کړلې او تاسو په الله تعالی کینو کې په یو هفته کې راور رسیدل په یو هفته کې دنه مطلب فیلینګ وشلو ما ته په یو هفته کې بل ملو شلو او ډیر نوې مجی زما په خیال یو هفته یا لسرزی یا دول سرزو کې زمنګ د ګودام نه دغه بلډونا فیس واش دوله ک دانی ختم شې دي لکه زما نه مچ بلډونا خلخ وخې او تاسو په الله تعالی کینو کې دومره زی سره بلډونا ویتامین سی فیس واش ختمېدل دادا اعتماد دادا محبتونو دادا دعاګانو لوی سر دی نو بیا په یو زیر سره یو आवाज نه کوي راځي خان بهر ون د چکا आवाज برا سره کوي چکا ها چکا आवाज وکوخو دسه आवाज نه کنه صحیح आवाज برا سره کوي ورغه نو ون بهر

सवा विवाह का समंगा वा सूरी देखे नंबर का नंबर वाले कालो की जी 316-622-22 और 42 खेरा खुलासमी जरूरी दा खबर समंग सर शेयर की जी देर से जरूरी खबरदार जी चित समंग सर दा आगे जरूर समा प्रोग्राम की मदद कालो के खेरा 412 समंग आवाज में हूं मशूल गटा वजदार जी समंग आवाज दल तक छोड़ आगे सर वाईफाई का न कही और चकला वाईफाई

थैंक यू मानो डेरे जाते शुक्रिया डेरे जाते मन खुशानो सी रखेरा आबाद सी रखेरा थैंक यू समगड़ी लिस्ट

दगुल पाने स्ताप पानो के प्रतिदि, दगुल पाने स्ताप पानो के प्रतिदि, दगुल

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: We'll be back, right after the commercial break.
2: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मध्यम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
3: जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी, खो कुचरता द दग जवानको पवख बाने गम उनकलेशी, नो प रारवान वख की दग जवान के सासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी। द ऑयली स्किन औ द दानो द पारा यो डियर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, तुम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए। डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, तुम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा, तुम चिप सलूर रजू की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई। और ये वाजिदा ना द दग दानो चुकम दागो न दी अगर हम पर मुकम्मल तो गबाने खत्मेगी। पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड, सल्सिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल आओ क्लिंडा माइसिन, कुमची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी। औ दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी, कुमची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो के दनन दनन सासु दानी और द दानो दागुना प मुकम्मल तो गबानी खत्म ही। नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल सोरना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन डेरे मसले अवारे कई। द मजीद मालूमातो द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk।
4: खबरी हागा ठोल बीमारान चा हड़ुकी माछी याद माते दो नपस गलत पेवन शिवी चिदचा दखपो और रघुन बन शिव या गुते बेहरकत शिव चे दखपो डोकोंडो दनन लाड़ा खत्म शिवी दर्दुना और टकार कवि चिदचा अखपे की और हागा ठोल मरीजान कमचे दमला दमहरो याद पटोनवी याद माशुमानो खपी कगी नागेटोलो मरीजानो द पारा खबर उतवार परोज बांदी सहर द अतो बजो नवाखली माजीगर तर सलोर बजो पोरे द इस्लामाबाद और द पेखवर नुमवड़े डॉक्टर आर्थोपेडिक एंड ट्रामा सर्जन डॉक्टर तारिक रहीम सेब MBBCPS FCPS X Registrar HMC Peshawar Sahar da ato bajo na wakhla Mazigar tar saluro bajo puri Tasu tashrif rawde she Nupatayar Al Plaza Al Said CNG ta mahamakh Konda Mod Jahangira Road Sawabi Mazid da malumato da para Ya da number agasto da para Padhe number rabitao ke 0314 15 13 232 یعنی کہ 0314-153-232
5: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چھ ملک موڑے ڈاکٹرز بموجود بھی چپ احمد میڈیکل سپیشلسٹ ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ

0: अब्दुल बासित जनरल सर्जन असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जुबैर बशीस्ट यानी दरगुनो और पटो स्पेशलिस्ट डॉक्टर आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद निकाश जनरल सर्जन डॉक्टर फैसल जिया और प्लास्टिक आईडी डॉक्टर शगुफ्ता ताज मौजूद हुई जमुन सहूलियात इन ICU यानी दमाशुमान दपारा दिशो सहूलत इको ECG एक्सरे अल्ट्रासाउंड लेबॉरेटरी फार्मेसी ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम स्पेशल कमरे रेडियो दिलबर पुवास्ता रात ऑपरेशन लेबॉरेटरी और मेडिसन बांधे 10% नवाला 33% पूरे डिस्काउंट हम मौजूद दे पता पुख्तुनख्वा मेडिकल सेंटर निस्त बादशाह खान मेडिकल कम्प्लेक्स शाह मंसूर सवाबी टेलीफोन नंबर 09382801129 मोबाइल नंबर 03032928858।
1: ये है एक दुनिया इल्म अमल की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है दी कादी आज़म ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा। एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निजाम तालीम, सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम, तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज्जम मरबूत तालीमी माहौल। 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, सवावी, जैदा और मैनी चौक कोठा, या हेड ऑफिस के नंबर 09382801003 पर राबता कर सकते हैं।
2: मावेले माले द शारजाने काली रावड़ा
3: जो उस्ता कालू द पारा शारजी तसिंगल आर्शमा
2: ओहो पमीना बाजार टोपई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची दुबई और शारजा टूल वैरायटी मौजूद था
3: नुदा सिवाया का ना
2: शारजा ज्वेलर्स शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जेब ब्रदर्स फोन 09382732 65।
0: टूपी मेडिकल केयर सेंटर, टूपी मेडिकल केयर सेंटर के वा डॉक्टर शहबाज खान कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट नमाजीगर सलूर नवाखला तरमाखाम अतोपुरी नास्ती छुट्टी द जुमे पोरस डॉक्टर वसीम हैदर तनूली ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन द इतवार पोरस नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरी डॉक्टर मेमूना आमिर गायनाकोलॉजिस्ट द इतवार पोरस शहर दनो नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरी डॉक्टर समीना बीबी फिजियोथेरेपिस्ट द हफ्ती अव इतवार पोरस द शहर 9 बजे नवाखला तरमाजीगर सलूर पूरी डॉक्टर शहजाद फिजियोथेरेपिस्ट द जुमे हफ्ते और द इतवार पोरस माजीगर सलूर बजो नवाखला तरमाखाम अतो बजो पूरी और दे सरसरा डॉक्टर इमाद जमान सेब शुगर स्पेशलिस्ट वा द जुमेरात पोरस सहर दनो बजो नवाखला तरमाजीगर सलूर बजो पूरी ओपीडी कभी 24 घंटे सर्विस लेबर रूम मेडिकल स्टोर अल्ट्रासाउंड इको ECG जनरेटर सहूलत और पेशेंट मेडिकल वार्ड दो पता याद साथ है टूपी मेडिकल केयर सेंटर अयास प्लाजा जड़ा मेले लार टूपी मोबाइल नंबर 03536668278 द्वेम नंबर दे 03336444480।
4: वेलकम टू FM 94 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी फ्रॉम 5 AM टू 1 AM।

जी ग्रहण कदर में दर्दन को पलिंग बंद चे देवा के शोक दा शो आवरी न बस पर रेडियो बंद शो चे कम दा अगर निश्चित देवा के डिस्कनेक्ट था इंशाल्लाह का जुन्द या खैर खिरियत हुई तो इतवार प्रोज बंद हुआ माजी गर द पिंजोन वाले तत्री बुजु पुरे सास पर खिदमत के ब्याज तेरे के मागे दाम पर खुल कुर्बा जांगिर ली उस अफजल रडी दुआगान उस इजाजत पर के अल्लाह पामान।